FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 47 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

महेंद्र चंचल और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। कार्यक्रम भक्ति धारा में चलिए अब आपको सुनवाते हैं विदुषी निर्मला देवी।

सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल को।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना सुधा मल्होत्रा, नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौडवाल और विदुषी निर्मला देवी को। ये आकाशवाणी बैतूल है।

0: से शनिवार सुबह 10:30 पर,
1: जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से
0: सोम बुध गुरु और शनिवार को।
1: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियाँ,
0: प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली।
1: मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद,
0: जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही की पसंद के चंद गीत।
2: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत,
0: FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
3: आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
4: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के हम भारतीय नागरिकों के 10 मूल अधिकारों को संविधान के तहत संरक्षित और सुरक्षित किया गया है और हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय उनके उल्लंघन न होने देने की गारंटी देता है। मूल अधिकारों के छीने जाने वाले प्रकरणों की सूक्ष्म पड़ताल कराता है और उनके पुनर्स्थापन का उपाय भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग भी पीड़ितों के उद्धार का उपक्रम करते देखे जाते हैं, किंतु ये सारे प्रयत्न हमारे देश में ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहे हैं। इस वास्तविकता की भयावहता का मूल कारण हमारी अपनी संकीर्ण मानसिकता और सोच है। हम नेताओं, कवियों, कलाकारों में आम आदमी के स्थान पर महामानव का अध्यारोपण कर देते हैं, उनमें भगवत सत्ता का दर्शन क्यों करने लगते हैं। अवतारवाद की अवधारणा के फलस्वरूप हम हर आदमी में या तो देवता देखते हैं या दानव। आम आदमी की आदमियत हमारे लिए महत्वपूर्ण रह ही नहीं जाती, इसलिए हमारे पुराख्यानों और दंतकथाओं में जीवन का यथार्थ हटा दिया गया है। हमारी सोच यहाँ आकर सिमटती है कि साधारण जन जमीन से उठकर तमाम अड़चनों, बाधाओं को पराजित करे और हीरो बनकर आगे आए। देवी शक्तियों से संपन्न काल्पनिक पात्र हमारे सच हो गए हैं और सारी विडंबना यहीं से उठ खड़ी होती है। हमारी संकीर्ण सोच और विचारधारा ने मोहल्लों मोहल्लों में हुड़दंगियों को पैदा कर दिया है, जो साधारण जन के शांत जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न

0: करते हैं। पुलिस प्रशासन के वैधानिक सेंसर के ऊपर बहुत से स्थानीय सेंसर हमारी वैयक्तिक स्वतंत्रता का चाहे जहां और चाहे जब अपहरण कर देते हैं। नेताजी की तुलना में उनके छुटभइयों से हमारी स्वतंत्रता में कहीं अधिक बाधा डाली जाती है। होली हो, दीपावली, गणेशोत्सव हो या दुर्गा पूजा के पर्व, हमें छुटभइयों की ज्यादतियों को झेलना ही पड़ता है। गली मोहल्लों के स्वतंत्र हरण के ये दृश्य राष्ट्रीय स्तर पर हमें झेलने को मजबूर किया जाता है। निजी स्वतंत्रता पर खुलेआम इतना बड़ा डाका कि हमारे जीवन जीने के तरीके के फैसले कोई और दे रहा है, जिसे इसकी कतई चिंता नहीं है कि उन फैसलों के चलते कुंठा का साम्राज्य फैल रहा है और दुराग्रहियों जिहादियों को पनपने का मौसम फल फूल रहा है।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, यह आकाशवाणी बैतूल है।
2: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
3: 12% अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब होगा।
4: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
5: डेयरी फार्म में दूध में फेट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है।
2: स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी, तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
6: आपके व्हाट्सएप संदेशों और गीतों पर केंद्रित फरमाइशी प्रोग्राम

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थे सुरेश वाडकर और साथी। ये आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, अब वक्त है लोकगीतों के प्रोग्राम लोकरंजनी का। आज इस कार्यक्रम में सुनिए गणपत लाल डांगे और साथियों को।

0: थाने भुआ जी बुलावे घर आओ जवाई
1: जी ने मालूम होया।

0: भुआ जी बुलावे घर आ जवाई लाज के रंग माने भुआ जी बुलावे घर आ जवाई लाज के रंग
1: भुआ जी ने माल महोले मारे भी भुआ जी आया भुआ जी

गीतों का प्रोग्राम लोक रंजनी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना गणपतलाल डांगी और साथियों को। ये आकाशवाणी बैतूल है।

0: श्रोताओं, हम आपको बताते चलें कि आज सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर चर्चा, जैव विविधता और महिलाएं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला सखियों की पसंद, व्यंजन विधि, कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। याकश वाणी बैतूल है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोज, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांग्लादेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें अभी के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से। कुछ जन उपयोगी सूचनाओं के साथ हम हाजिर होंगे सुबह सवेरे में सुबह 7:50 पर। आज की इसी सभा में सुबह 8:30 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आज सुबह 10:00। 10:05 पर प्रसारित होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पार्टी आपके गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण होगा आज सुबह 10:30। इस कार्यक्रम में आज सुनिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर चर्चा, जैव विविधता और महिलाएं। इसके अलावा इस कार्यक्रम के श्रृंखला व्यंजन विधि में आज का विषय रहेगा हरी सब्जियों से पौष्टिक व्यंजन। इन सब के अलावा श्रृंखला सखियों की पसंद, कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। माफ कीजिएगा, युववाणी कार्यक्रम शाम 5:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर चर्चा, जैव विविधता का महत्व और संरक्षण। इसके अलावा इस कार्यक्रम की श्रृंखला लोक रंग में आज का विषय रहेगा जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली। इन सब के अलावा श्रृंखला से मिलिए कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। गोतुली भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम सुनिए आज शाम 6:05 पर। कलाकार होंगे अनुराधा पौडवाल। गैर फिल्मी गजलों भजनों कव्वालियों का प्रोग्राम सब रस का समय रहेगा शाम 6:50। श्रोताओं, कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे आज शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आज सुनिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चर्चा। सामूहिक कृषि चर्चा में आज का विषय रहेगा जायत की फसलों में सिंचाई प्रबंधन। इन सब के अलावा श्रृंखला बातें खेती किसानी की एक भेंट वार्ता, कुछ लोक संगीत, मौसम का हाल और बाजार भाव। आपके संदेश आपके गीत फरमाइशी फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम सुनिए रात 8:00। साज और आवाज कार्यक्रम रात 8:30। फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आपके मीत ये गीत का समय रहेगा रात 10:00। और सभा के अंत में रात 10:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए विदुषी प्रभा अत्रे का गायन राग मधुवंती में। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 10:30 कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर चर्चा, जैव विविधता और महिलाएं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला व्यंजन विधि सखियों की पसंद, कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। युववाणी कार्यक्रम शाम 5:30। इस कार्यक्रम में आज सुनिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर चर्चा, जैव विविधता का महत्व और संरक्षण। लोक रंग श्रृंखला में आज का विषय रहेगा जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली। इन सब के अलावा श्रृंखला इनसे मिलिए कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी बैतूल है। अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज होगा इंटरनेशनल बिग कैप अलायंस की समिट इवेंट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, लू के खतरे से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पी समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम भोपाल में होने वाले इस पी समिट इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्यप्रदेश शासन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव संवर्धन, विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, यह उनकी पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा

0: पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में संरचित संवाद, अनुभव साझाकरण और सहयोगात्मक आदान प्रदान किया गया। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि, युवा उद्यमी और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। दूसरे दिन का सत्र क्रिस्टल आईटी पार्क में आयोजित हुआ। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मुज जल डमरूबंध के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा। श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री प्रेमी वोंग और जापान के विदेश मंत्री के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। बैठक में रेल राज्य मंत्री बी सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के फील्ड अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: देखिए बस समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल नंदीबाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के लिए आवास, आरोग्य और जन कल्याण के प्रभावी कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को पाडोना के ग्राम आंवला में आयोजित जनजातीय समुदाय से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से निर्मित हो रही सड़कें नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने में सहयोगी हैं। इनसे दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों भोपाल और इंदौर उज्जैन की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों से लाभान्वित होंगे। इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन बन जाने से ये संपूर्ण क्षेत्र विकास के नए आयाम को स्पर्श करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। खजुराहो में 47.4 डिग्री, नौगांव में 46 डिग्री और मंडला में 45.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर पंखे और ग्रीन नेट भी लगाए गए हैं। आपको समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल आयोजित किसानों की समस्याओं संबंधी बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि उद्वहन सिंचाई योजना से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। आगर मालवा में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से संचालित 4 कृषि रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसत ने जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे और बांद्रा टर्मिनल जाने स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को आगामी 24 मई से नियमित ट्रेन का दर्जा देने नोटिफिकेशन जारी किया है। निंदौरा में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषि पुरस्कार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। गुना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर कलेक्टर रिजू वासना की अध्यक्षता में कल जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से।

यादों के झरोके से कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा ये गीत, गीता दत्त, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम यहूदी।

फिल्म यहूदी से अभी आपने सुना ये नगमा। कार्यक्रम में अब अगली प्रस्तुति मुकेश की आवाज में।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आपने सुनी फिल्म जी चाहता है से ये गाना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह।

रूठा ना करो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे इसी फिल्म से हसरत जयपुरी का लिखा यह गाना। संगीत था श्री रामचंद्र का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल को।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम यादों के झरोके से। यह आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज की सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे,
0: सुबह सवेरे में लीजिए सुनिए आज की पहली सूचना। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से हितग्राहियों को स्वयं का उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के जरिए आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के अनुसार योजना अंतर्गत विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए 50,000 रुपए से 50,00,000 रुपए तक तथा सेवा और रिटेल ट्रेड व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए से 25,00,000 रुपए तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। आवेदक की वार्षिक आय 12,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए तथा अन्य किसी शासकीय स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रचलित ऋण गारंटी शुल्क का वहन भी शासन द्वारा किया जाएगा। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय अथवा समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि आवेदन संबंधी बैंकों को अग्रेषित किया जा सके।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि पशुपालन उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
2: 12 से ज्यादा % अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब होगा।
3: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
4: डेयरी फॉर्म में दूध में फेट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है।
1: स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी, तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
5: अगली सूचना, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जिले में 20 स्वास्थ्य शिविर लगाने की प्राप्त स्वीकृति के परिपालन में आज यानी 22 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ी सावलीगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोरोग चिकित्सक, MD मेडिसिन, दंत रोग चिकित्सक, चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। डिजिटल हेल्थ ID, आयुष्मान कार्ड अथवा अन्य स्वास्थ्य जांच, मलेरिया, TB, सिकल सेल स्क्रीनिंग, ब्लड जांच, एक्सरे, परिवार कल्याण काउंसलिंग भी की जाएगी। साथ ही शिविर में जन्मजात कटे होंठ व तालू जलने से उत्पन्न विकृतियों, बच्चों की सर्जरी, मुंह के छाले और घाव, तंबाकू या गुटखा के कारण मुंह का कम खुलना, ट्यूमर और गठान एवं संभावित कैंसरों के मरीजों के लिए चिन्हांकन और उपचार के लिए निशुल्क शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने की अपील की गई है।

0: अगली सूचना छिंदवाड़ा डाक संभाग के अंतर्गत डाक घरों के आधार केंद्रों में नवीन आधार पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेशन, आधार डेटा में मोबाइल और ईमेल लिंक आदि कार्य करवाने के लिए 25 और 26 मई को विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधीक्षक डाकघर छिंदवाड़ा संभाग के अनुसार 22 और 23 मई को टोकन वितरण किए जाएंगे, वहीं 25 और 26 मई को विशेष अभियान के तहत बैतूल जिले के बैतूल प्रधान डाकघर के अतिरिक्त कोठी बाजार, बैतूलगंज, आठनेर, सारणी, पाताखेड़ा, दुनावा, मुलताई, भैंसदेही, चिचोली, शाहपुर, उप डाक घर में भी आधार पंजीयन और अपडेशन प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेंगे। प्रधान डाकघरों में शाम 8 बजे तक कार्य किया जाएगा। अपने निकटतम डाकघर आधार केंद्र में जाकर इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की गई है।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम, बुध, गुरु और शनिवार को।
2: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
1: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
3: बंसी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
0: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल सचिव के अनुसार जिले में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में निर्धारित अनुकंपा अवसर प्राप्त करने के पश्चात भी उत्तीर्ण नहीं हो सके विद्यार्थियों को डिप्लोमा पूर्ण करने के लिए एक विशेष अनुकंपा अवसर प्रदान किया गया है। विद्यार्थी मई जून 2026 अथवा दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाली किसी एक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल प्राचार्य के अनुसार डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में वर्ष 2010 से 2018 तक प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जो अपना डिप्लोमा पूर्ण करना चाहते हैं, वे अपनी समस्त अंक सूचियों के साथ निर्धारित समय सीमा में महाविद्यालय में उपस्थित हों। प्राचार्य के अनुसार इस विशेष अनुकंपा अवसर प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों को भविष्य में किसी अन्य अवसर की पात्रता नहीं होगी तथा इस संबंध में किसी भी माध्यम से किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
4: सुबह सवेरे
0: आकाशवाणी बैतूल है। अब वक्त है समाचार प्रभात का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन्स IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प योजना, उन नौजवानों के लिए।

0: करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूडी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूडी ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूडी के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान और कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
4: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5 लाख की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद सरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द है 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही।
0: ये तो सचमुच

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर

0: कर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
1: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
2: सिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
1: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
2: हाँ।
1: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
2: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
1: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
2: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, अच्छा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
2: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं तिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही है।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
3: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
2: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
2: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
2: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
2: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
2: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
3: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
3: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: अजी सुनिए।
2: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो तिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
2: हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे इसको भी डालो।
2: हाँ हाँ ये देखो देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
1: प्यारा लग रहा है।
3: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया।

0: लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुँचती चली गयी। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
3: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगे।
2: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
1: अरे देखो तो कैसे हरियाली हो गई।
4: ऐसा नहीं है जैसे हमारा शहर हो।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था, उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
5: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
6: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
7: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा, एक नई

ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से?

देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार। कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप अगला कार्यक्रम सुनेंगे। विविध भारती मुंबई से।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयां, औषधियां, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और जीव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायी ताने बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जीव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ। प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपने घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं। पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें। जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। ¶¶

0: रस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तुम मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
2: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चुचुलुक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इशरत कमल के बोल है, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरी प्रदर की दुल्हन इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सुहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये अगला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जितलोग अभी नहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था। निचले जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम किया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के, वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असित भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर

मराठी इसका नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सजे दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत वो दिन में

सतलुज की सुरंग वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ गया है। लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान भी लगभग 28 डिग्री तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार जिले में वर्ष 2005 में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जाता है। भीषण गर्मी के बीच छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी है। विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह में सैटेलाइट के माध्यम से 1200 से अधिक फायर अलर्ट मिले, जिन्होंने 705 वन क्षेत्रों और 515 वन क्षेत्र के बाहर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन विभाग के उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि आग से लगभग 338 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 132 लोगों पर वन अपराध दर्ज किए गए हैं। विभाग ने बताया कि जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण बहुए संग्रहण के दौरान लगाई जाने वाली आग, नरवाई जलाना और लापरवाही से फेंकी गई जलती बड़ी सिगरेट है। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में गेहूं उपार्जन, खाद वितरण और पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को इन टोकरी उपार्जन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद की उपलब्धता की जानकारी व्यापक रूप से किसानों तक पहुँचाई जाए। बजट में बताया गया कि जिले में अब तक 8,330 किसानों से 46,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा और पंडोली जिले के पर्यटक आने वाले एक माह तक बहुत कम गांवों में पर्यटन ग्रामीण में बने होम स्टे में रहकर ग्रामीण पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने बताया कि जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए ग्रीष्मकालीन ऑफर दिया है। 20 मई से 20 जून तक पर्यटक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। छिंदवाड़ा वन वृत्त में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य तेजी से जारी है। अधिक तापमान के कारण इस बार पत्ते जल्दी तैयार हुए हैं, जिससे संग्रहण कार्य में रफ्तार पकड़ ली है। उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्पेन की एक टीम ने छिंदवाड़ा के पर्यटन गांवों में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की। स्पेन से आई टीम ने तामिया, सावरवानी, ढोसावानी और चिंकीपुर में 3 दिनों तक ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति, पर्यटन गतिविधियों और पातालकोट की पारंपरिक आदिवासी विवाह रस्मों को कैमरे में कैद किया। ये शूटिंग रूरल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन सीरीज के लिए की गई है, जिसका प्रसारण लगभग 80 यूरोपीय देशों में किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण और इको टूरिज्म को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। पिछले दिनों सांसद विवेक पंती साहू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी विकास खंडों में अगले 10 दिनों तक कृषि रथ गांव गांव पहुंचकर किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती, विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर शहर में अमानित प्लास्टिक डिस्पोजल और पॉलिथीन के खिलाफ संयुक्त छापेमारी कार्रवाई की गई। कार्रवाई नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम द्वारा की गई। छिंदवाड़ा सांसद विवेक पंटी साहू ने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चार फाटक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान चार फाटक और चौरईकुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरब्रिज और सौसर लोधीखेड़ा मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। जिले में संचालित आंगनबाड़ियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। 1 से 15 जून तक जिले के सभी आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। इस दौरान निर्धारित टीकाकरण और मासिक वजन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। छिंदवाड़ा और पंडोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL के 211 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इस स्वीकृति केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के सांसद विवेक पंथी साहू के प्रयासों के बाद प्रदान की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पार्टी आपके गीत।

0: इस गीत को सुनना चाहते थे गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयदेव बिरक और मीका बिरक राजिम छत्तीसगढ़ शिवाजी चौक से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य और कृष श्रीवास्तव अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव और इसी गीत को सुनना चाहता रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: है?
1: ए नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म रुखसत से ये गाना, बोल अनजान के संगीत कल्याण जी आनंद जी का और पसंद आप सबके। गंज बैतूल से हितेश जैन, हरीश आर्य, पूरन लाल रायपुरे, सलीम भाई, ललित रायपुरे, दोलू सुरे और उमेश जैन। हनुमान चौक केरपानी से संतोष पात्री, शक्कुन, अंजलि, नीलू, सुमित, जय पात्री, प्रदीप बघेल, अनिल कास्ते, अर्जुन शिवनकर, नितेश पात्री, एस के पात्री और इनका पूरा परिवार और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश पट्टा, नीलम पट्टा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश पट्टा ने। तो इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गाना। फिल्म है रुखसत, आवाज है सुरेश वाडकर की।

प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: आनंद मुखी का लिखा गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, संगीत राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम दिल दीवाना। इस गीत को सुनना चाहते थे छत्रपति संभाजी नगर से राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश कौर और मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत को सुनना चाहता भटापारा तत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।
1: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: सारणी से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तरनी सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा और गौरव गरिमा शर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म परख से ये गाना।

0: परख के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके गीत संपन्न होता है। आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पार्टी आपके गीत। यह आकाशवाणी बैतूल है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड

0: कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी आकाशवाणी
1: यह आकाशवाणी बैतूल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को चैताली गौर का प्यार भरा नमस्कार। हर सुबह एक कोरा कैनवास है, ब्रश आपकी सोच का है और रंग आपकी मेहनत का। आज का दिन कैसा होगा, जैसा चाहे वैसा रंग भरिए। इसी खूबसूरत से विचार के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। अगले कुछ समय में क्या होने वाला है खास, तो भाई इसे जानने के लिए तो आपको बने रहना होगा हमारे साथ। श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु अचानक गायब हो जाएं, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? शायद बहुत शांत, लेकिन वो शांति नहीं जिसमें सुकून हो, शांति हो, आनंद हो, बल्कि एक ऐसी खामोशी जो डराती हो। और इसी खामोशी को रोकने में कौन अहम भूमिका निभा रही हैं? हम महिलाएं। बहनों, रात की चादर धीरे धीरे सिमट रही है, पूरब दिशा में हल्की हल्की लालिमा से रंगने लगी है। पेड़ों पर बैठे पक्षी नींद से जाग चुके हैं। नदी की लहरें मध्यम मध्यम संगीत सुना रही हैं। दूर कहीं मंदिर की घंटियां कानों में शहद घोल रही हैं। गायों के गले के घुंघरू मानो सुनहरी भोर का इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना मधुर राग छेड़ रही हो। इसी समय गांव की एक महिला सिर पर खाली टोकरी लिए जंगल की तरफ चली जा रही है। नाम है कमला। कमला पढ़ी लिखी तो नहीं है, उसे शायद जैव विविधता शब्द का अर्थ भी ना पता हो, लेकिन उसे ये पता है कि अगर आज उसने ज्यादा लकड़ी तोड़ ली तो कल उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वो सूखी टहनियां उठाती है और हरे पेड़ों को छोड़ देती है, क्योंकि उसके लिए जंगल सिर्फ जीवन यापन का एक जरिया नहीं है सखियों, वो है एक जिंदगी। जिसे किताबों में पढ़ाया गया वो उसने कर दिखाया है, जिसे किताबों में पढ़ाया गया वो उसने कर दिखाया है, धरती को बचाने का फर्ज उसने चुपचाप निभाया है। अब सखियों, जरा दूसरी जगह चलिए। जैव विविधता प्रकृति की वो सुंदर माला है जिसमें हर जीव एक सुंदर मोती है। हम बात करें नदी की, तो ये वो धागा है जो इन मोतियों को जोड़ता है। जब नदी स्वच्छ रहती है तो जीवन मुस्कुराता है। बहनों, हम महिलाएं जब लोगों को कचरा और गंदगी नदी में न डालने के साथ साथ इसे साफ रखने के लिए प्रेरित करती हैं, तो जल में रहने वाले जीव और पौधे सुरक्षित रहते हैं। हम महिलाएं अपनी सूझबूझ और समझदारी से मिट्टी बचाती हैं, पानी बचाती हैं, जंगल बचाती हैं। दोस्तों, जैव विविधता कोई चैप्टर नहीं है, ये वो सिस्टम है जिसमें प्रकृति के जरिए इस विविधता और हमारे बीच तालमेल बना है, और इस सिस्टम को लगातार चुपचाप संभाले हैं हम बहनें। तो आइए सखियों, आज हम अपने आप से वादा करें कि यथासंभव प्रकृति को बचाएंगे, जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता को सुरक्षित रखने में छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण कदम होगा। तो बहनों, ये तो थी आज की बात का विषय, जिसमें हमने चर्चा की जैव विविधता और उसे सुरक्षित रखने में हम महिलाओं की भूमिका पर। अब लेते हैं कार्यक्रम में छोटा सा अंतराल।
1: पापा, लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1,000 ले।

0: जाओ अपना मोबाइल लाओ ले ले। भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान। इस अंतराल के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब चले कार्यक्रम में अगले पड़ाव की ओर, जहां हम सुनेंगे आप ही के कुछ मनपसंद गाने श्रृंखला सखियों की पसंद में। श्रोताओं, वादे सिर्फ शब्द नहीं होते, ये दो दिलों के बीच विश्वास की सबसे मजबूत डोर होते हैं। जब प्रेम सच्चा हो ना, तो हर पुकार अपनेपन की आवाज लगती है, और दूरियां कितनी भी लंबी क्यों ना हो मायने नहीं रखती। आज का ये गीत सखियों अटूट समर्पण की खूबसूरत सी मिसाल है। गाने की हर पंक्ति में मानो मोहब्बत की नई गहराई दी गई हो। तो सुनिए फिल्म ताजमहल से ये प्यारा सा गीत, जिसे सुनना चाहा है पुणे महाराष्ट्र से आनंद, दीपिका और अरुण महालहा ने।

0: पीछे क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है, सुन फटे फटे पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: जब प्रेम दिलों में दस्तक देता है ना दोस्तों, तो हर तरफ खुशियों की रोशनी बिखर जाती है। मन हर पल उसी की यादों में खोया रहता है। आंखें अपने आप किसी के सपने सजाने लगती है। हर ख्वाब सुनहरा,

और दिल की धड़कन मधुर लगती है, हवा में मानो संगीत सुनाई देता है। तो लीजिए सुनते हैं इसी धड़कते हुए एहसास को लिए ये प्यारा सा गीत, जिसे सुनना चाहा है राजेश दांगी, एडवोकेट रिंकी दांगी, सार्थक और आर्या दांगी ने लिंक रोड बैतूल से।

0: पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: चलिए अब रुक करते हैं रसोई की तरफ, जहां हम जानेंगे एक ऐसा स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन जिसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी बड़े चाव से खाएंगे, पालक पनीर ग्रीन टिक्की। हम आपको बता दे सकें, इस व्यंजन में पालक के साथ और भी हरी सब्जियों का उपयोग किया गया है, जिससे ये प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन से भरपूर है। तो बहनों, इसमें उपयोग में आने वाली सामग्रियां कुछ इस प्रकार है। 1 कप ओट्स, 1 कटोरी बारीक कटा पालक, थोड़ी मेथी की पत्तियां, बारीक कटा पत्ता गोभी, थोड़ी शिमला मिर्च, 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी दही, थोड़ा हरा धनिया, कद्दूकस किया आधी कटोरी पनीर, 1 या 2 उबले आलू, 3 से 4 हरी मिर्च, इसके साथ थोड़ा सा अजवाइन, लाल मिर्च पिसी हुई जितना आपको तीखा पसंद हो, हल्दी थोड़ी सी और नमक स्वाद अनुसार। चलिए अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। तो सबसे पहले सखियों, ओट्स को थोड़ा सा भून लें। अब एक बर्तन में पालक, मेथी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरा धनिया, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गाजर और ककड़ी भी डाल सकते हैं। अब इसमें पनीर, उबला आलू, ओट्स, अदरक, हरी मिर्च, नमक, अजवाइन, इन सभी को मिलाकर आवश्यकता अनुसार दही मिलाते हुए अच्छी तरह से गूथ लें। अब छोटी छोटी सी टिक्की बना लें। इसके बाद गर्म तवे पर घी या तेल लगाकर इन टिक्की को सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेके। तो लीजिए, तैयार है ग्रीन पालक पनीर टिक्की, जिसे आप दही या टमेटो सॉस के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन स्वाद में इतना लाजवाब है सखियों कि बच्चे भी बिना नखरे किए तुरंत खा लेंगे। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि थाली में अगर हरी सब्जियां हों तो स्वास्थ्य भी मुस्कुराता है। चलिए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में। सखियों, कुछ प्रेम कहानियां शब्दों से नहीं, एहसासों से समझी जाती है। सच्चा प्यार शोर नहीं करता, सीधे दिल की धड़कनों में उतर जाता है। तो सुनते हैं फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये प्यारा सा गीत, जिसमें प्यार की मासूमियत है, इंतजार की कसक भी है और जीवन भर साथ निभाने का खूबसूरत सा सपना भी है, जिसे सुनना चाहा है चंद्रशेखर बाट बैतूल से कंचन महतो, राजेश महतो, पावनी और पवित्रा महतो ने। तो आइए प्यार की इसी मीठी खुशबू में भीगे इस सदाबहार गीत का आनंद लेते हैं।

सखियों, हमारा अगला महिला जगत कार्यक्रम होगा प्रातः 10:30 पर दिन शनिवार को रेडियो सखी उर्वशी पांसे जी के साथ, जिसमें चर्चा होगी एक महत्वपूर्ण विषय पर एक नए मेहमान के साथ। साथ ही मनोरंजन होगा कुछ प्यारे प्यारे गीतों के साथ, तो सुनिएगा जरूर। दोस्तों, रिश्तों की डोर जब प्यार और मुस्कान से बंधी हो तो हर पल त्योहार लगता है ना। और घर में अगर शादी का माहौल हो, ढोलक की थाप हो और रिश्तों में प्यार भरी छेड़छाड़ हो, तो क्या कहना। हमारा जो अगला गीत है वो सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि शादी वाले घर की खिलखिलाती सी तस्वीर है। कहीं अपनापन तो कहीं शरारत, तो कहीं मासूम सी शिकायतें। तो चलिए, हंसी और प्यार के रंगों से सजे इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं, जिसे सुनना चाहा है कलमेश्वर से सीमा बागड़े, संजय बागड़े और अथर्व बागड़े ने।

दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमें उम्मीद है ये छोटी सी सुरीली कोशिश आपको पसंद आई होगी। बहनों, जैसे हर सफर की एक मंजिल होती है, वैसे ही हर विदाई अगली मुलाकात का संदेश लाती है। बस इसी विश्वास के साथ दीजिए अनुमति चैताली गौर को नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, यह आकाशवाणी बैतूल है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से।

पंकज उधास की आवाज में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, इसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत

सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रंग तरंग प्रोग्राम में पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

रंग-रंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ साहिब का लिखा हुआ गाना समीरा कॉपीकर का संगीत है।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जेके सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाला और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराट ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टीवन बिन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाज़ें, सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश. अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत.
1: रंग तरंग.
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती. थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइड्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोराइड्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।

0: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रमणीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधीय नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परन्तु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और उसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों की महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: चला उस बदल में

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूं मैं राजोल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहां तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है। ये भी कोई बात है, धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी है। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। पर देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन सी कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं? अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने। बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोधी कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है। थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर है। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं। हे गर्मी, तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया। देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया। वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे। गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे, क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती। गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा। नाग बुलाओ आना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में।
याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती तन से बहुत पसीना आता हाथ सभी के पंखा रहता आरे बादल काले बादल गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों? और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए।

जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक

पिता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रही है कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती, एसी कूलर से न दिल बहलता है, रात में न नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारद, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है, आप वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर एक किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं, ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो जरूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरी सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

0: विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन, गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। ताजा हो रहा है ये संदेश। गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ही आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है, कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूं। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूं, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी, मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही है और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला।

मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, गुल पे दे दी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी, या अल्लाह या अल्लाह।

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहां नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहां से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। अच्छा, इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं।

पर भौरे कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटी साइज के कबूतर भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं, जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली सती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं, तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए, खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहा है कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आए। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है। जिया बेकरार है बरसात के लिए, कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है। इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूं, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान, यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग 1 सप्ताह की देर है। फिर भी हाँ, जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से

होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी जरूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा, खयाम का संगीत है। नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए। टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था।

मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे, हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है, जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गाय आकर बैठ जाती है। और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दो ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत न हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना

और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सत तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गाय आकर बैठ जाती है। और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दो ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट न करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में एक या दो पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना? गर्मी का मौसम निदाक काल कहा जाता है। यहाँ निदाक का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं, जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं? और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

कटकर घर आते हैं। लोग साल भर के लिए गेहूं, चने, दालें, मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं। तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहां पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे चटाई बिछाकर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था। मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उढ़ाकर ठंडा रखा जाता है। बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़ा होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती है। ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तुम्हें बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं, और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना, वो बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी, उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किन की है।

फिल्म कादम्बरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहां बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं लगता? और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता के अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदे बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आपसे ले रही हूँ इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्म गुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द डाका डिवीजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फिलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन
1: एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना। Secretary P.C. Lyon.
0: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
2: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
3: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है।

परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडलाइट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट इवेंट आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन में बिग कैट और जैव विविधता संरक्षण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर भी विशेष प्रस्तुति इस कार्यक्रम में दी गई। इसके साथ ही इंडियाज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026 सहित कई प्रकाशनों और डिजिटल पहलों का विमोचन भी हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि
1: धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित, भारत में भी लगभग 23% वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन श्रिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, भारत ने उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे।
0: धार की भोजशाला में आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को वाग देवी मंदिर करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की नमाज पर रोक लग गई है। दोपहर 1 बजे गर्भगृह में महाआरती हुई और फूलों से सजे परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भोपाल में 12 मई को हुई त्रिषा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई को पूरे प्रदेश में जांच के अधिकार भी दे दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रात में 8 बजे अशोकनगर पहुंचेंगे।

सिंधिया वहां जैन तीर्थ थुबोन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कल सुबह श्री सिंधिया नक्षत्र वाटिका शिवपुरी में कार्यक्रम के बाद गुना के लिए रवाना होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पर हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का मसौदा gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या हितधारक 5 जून 2026 तक अपने सुझाव वेबसाइट मेल sogad1@mp.gov.in पर कर सकता है। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें गोलकीपर आयुष रजक, डिफेंडर अंश भौत्रा और करण गौतम, मिडफील्डर अभिमानिकपुरी और फॉरवर्ड सिद्धार्थ बेन तथा गाजी खान शामिल हैं। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में मौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में जनभागीदारी सप्ताह एवं गर्मोत्सव के तहत ग्राम कानोर में 15 उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। शिवपुरी जिले में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान RCT के द्वारा 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। और आगरमालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के प्राचीन कमलकुंड से 7 कछुओं को कल वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया। वहीं IPL में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रनों से हराया। आज शाम हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण

0: पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के

0: छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देशभर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, इसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद

जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे।

0: दिखा दे।
1: बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे सुरों में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना। शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों की दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती है और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी जी जी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी जी जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके

0: बारे में भी हमें बताएं।
1: जी, मेरी दिन की सुबह तो सुबह ही हो जाती है, सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है नाश्ता वास्ता बनाना, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तो तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना, ये सब।
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है वो छोटी है अभी।
0: अच्छा। और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकनी का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये
0: जी,
1: सब।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
0: जी
1: खाने दाल छीलू।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी ने मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती। ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी बात है। ये आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती है ना?
1: जी दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा
1: कहना चाहती हूँ
0: जी
1: दो लाइना आपके लिए, हम दो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम दो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं। मेरे सीने में मेरा दिल धड़े थी, मेरे सीने में तेरा दिल जान, ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी,
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करते हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और
0: जी
1: बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती है
0: जी
1: वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं,
0: जी
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की
1: जी
0: केक सिखाती होंगी।
1: बिल्कुल।
0: तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो,
0: जी
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है,
0: जी
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का,
0: जी
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो
0: जी
1: हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी
1: बिल्कुल
0: होनी
1: नाप
0: चाहिए
1: तौल
0: उसमें।
1: जी,
0: उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा
1: कप्स
0: जाता
1: आते
0: है।
1: हैं। हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले,
0: जी
1: चाहे कोई पतीला ले,
0: जी
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक।
0: जी
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिस पे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है
0: जी
1: बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे, और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट है या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथ पिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं,
0: जी
1: अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको
1: जी
0: ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का डांस का बहुत ज्यादा शौक था,
0: हाँ जी
1: लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए।
0: जी
1: हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था,
0: जी
1: शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है,
0: क्या
1: उसने
0: बात है,
1: ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा,
0: जी
1: अम्मा अब नहीं है
0: जी
1: लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी, और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था,
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध
1: जी
0: भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से।
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा अब इतना बज गया अब ये
0: हाँ,
1: आएगा।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज
1: जी
0: आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संगीता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, हाँ। अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी ये ना बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं, अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी,
0: जी
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ,
0: जी
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा कर, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना
1: वही
0: जी?
1: साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ,
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी।
1: हाँ, मतलब
0: और
1: बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला,
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, यानी सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हम
0: क्या
1: सब।
0: बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
0: जी
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
0: क्या
1: मेरा
0: बात,
1: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ, तो
0: क्या
1: यानी
0: बात है।
1: सबको सीखा। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 ईयर्स की हूँ अभी,
0: जी।
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
0: जी
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
0: क्या बात
1: मतलब
0: है।
1: फ्री है एकदम, तो
0: जी
1: मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए, कुछ तो जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है, आपने बताई मुझे, बड़ा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: ये
0: लगा।
1: तो मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपनी मर्जी से कौन सा ही गाना
0: ठीक है
1: सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाते ही कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी
1: साया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं, तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल
1: नहीं,
0: पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा,
0: जी
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, अब हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाए?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा,
0: क्या बात
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं?
1: हाँ जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैम मैं डॉली बोल रही हूँ भोपाल से।
0: डॉली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम इस समय तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से
0: जी,
1: सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
1: गर्मी से बचने के लिए देखो प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं,
0: जी,
1: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ जैसे नींबू की शिकंजी है या रुआबजा है या दही की लस्सी है ये पीते हैं सब, ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराई मिलती है
0: क्या बात है।
1: मेरे से।
0: और आम का पन्ना नहीं बनाती हैं आप?
1: मैम आम का पन्ना नहीं बनाते हम, फिर जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो
0: जी
1: आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए,
0: जी
1: और मेरी सास का नाम सुमन है,
0: जी
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है, और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी
0: जी
1: माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा, ये
0: जी
1: है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, वेद भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1 2 4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम आशिया नाज है।
0: आशिया नाज, बिहार में है आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है,
0: जी
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: आशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम आशिया नाज है।
0: आशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है,
0: जी
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: आशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का बोल है मैं हूँ खुश।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं वर्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: वर्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: मेरी भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो सहेली और ये तो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दर्शा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो, जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादिया मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादिया मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी,
1: और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे,
0: जी
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए
0: जी
1: मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है। तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी,
0: जी
1: छाया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक
0: जी
1: कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ,
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उद्बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली अनेक स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजुल सी सरलता।
0: क्या बात।
1: धन्यवाद।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंची और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़क कर आग लगवाई जाती है तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने

दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है, हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रूपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रूपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई

अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसकने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगे और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहाँ के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। जानवा

थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चिढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

कुछ पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेलकूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इस दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

अब मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल है। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती है जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

जीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आज आ की रात ने बाहें खोल रखी है, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है। तेरी एक झलक को तरसती है ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया? बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया? हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती है, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती है। माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती है, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

0: उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5:30 बजे हैं। लीजिए पेश है युवा श्रोताओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, गोपाल दास नीरज जी के इन प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगा। तो पंक्तियां कुछ यूं हैं कि छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। दोस्तों, इन खूबसूरत और प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपके रेडियो सफर का साथी साहिल खान, और आप सुन रहे हैं युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हमारी आज की बात का विषय होगा जैव विविधता का महत्व और संरक्षण, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आगे क्रम इनसे मिलिए, में आप सुनेंगे नौतपा और गर्मी से बचाव पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार चौरे जी को। इसी के साथ क्रम लोक रंग में आप जानेंगे जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली के बारे में। साथ ही होंगे कल के आकर्षण और फिल्मी गीत। दोस्तों, रुख करते हैं आप कार्यक्रम की ओर, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं एक गीत।

दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर सुबह पक्षियों की चहचहाट ना हो, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू ना आए, पेड़ ना हो, तितलियां ना हो या नदियां सूख जाए, तो क्या हमारी दुनिया खूबसूरत रह पाएगी? दोस्तों, यही खूबसूरती, यही रंग, यही जीवन कहलाता है जैव विविधता। जैव विविधता यानी धरती पर मौजूद हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जंगल, नदियां, पहाड़ और उनका आपसी संतुलन। एक छोटा सा मधुमक्खी का छत्ता हो या विशाल जंगल, सबका अपना महत्व है। क्योंकि दोस्तों, अगर मधुमक्खियां नहीं रहें तो परागण नहीं होगा, फसलें कम होंगी, भोजन का संकट बढ़ेगा। अगर जंगल काटेंगे तो बारिश कम होगी, और अगर नदियां प्रदूषित होंगी तो जीवन की धड़कन ही रुक जाएगी। प्रकृति हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देती दोस्तों, बल्कि दवाइयां, भोजन, स्वच्छ पानी और मानसिक शांति भी देती है। लेकिन अफसोस, आज इंसान अपनी जरूरतों और लालच में प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण, नदियों की गंदगी और वन्य जीवों का शिकार धीरे धीरे हमारे जैव विविधता को खत्म कर रहे हैं। और इसका असर, कभी असामान्य बारिश, हाल ही में हम देख रहे हैं भीषण गर्मी, और कभी बाढ़ तो कभी सूखा। प्रकृति अब खुद संकेत दे रही है कि अगर मुझे नहीं बचाया तो मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी वक्त है। हम छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पानी बचाना और अपने आसपास की हरियाली और जीव जंतुओं की रक्षा करना। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं है, प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए दोस्तों, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। तो आइए

एक वादा करें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, जैव विविधता की रक्षा करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुबह की वो चहचहाट, बारिश की वो खुशबू और हरियाली की वो मुस्कान महसूस कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात का विषय। अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, इस यादगार गीत के बाद अब रुख करते हैं क्रम इनसे मिलिए की ओर।
1: गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है और नौ तपे की शुरुआत होने ही वाली है। इस दौरान लू, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ती जाती हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारी टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग पर हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार चौरे जी। सर, हमारे कार्यक्रम युवाणी के टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आकाशवाणी श्रोताओं, मैं डॉक्टर रविंद्र चौरे। आज हम बात करेंगे नौ तपा क्या है उसके बारे में। नौ तपा वह अवधि होती है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र

0: युवाणी के टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आकाशवाणी श्रोताओं, मैं डॉक्टर रविंद्र चौरे। आज हम बात करेंगे नवतपा क्या है उसके बारे में। नवतपा वह अवधि होती है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। लगभग 9 दिन तक अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस दौरान शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और मौसम में लू चलने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर हम इसको वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह गर्मी का एक पीक पीरियड माना जा सकता है। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इस समय में सूर्य अपने उत्तरायण काल में होता है। इस समय ग्रीष्म ऋतु में शरीर का जलीयांश सूर्य के द्वारा शोषित कर लिया जाता है और इस समय शरीर का बल जो है वो कम होता है। नवतपा 25 मई से 2 जून तक माना गया है।
0: ओके सर, नवतपे के समय शरीर पर सबसे ज्यादा क्या प्रभाव पड़ता है?
1: इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे तापमान नियंत्रण पर पड़ता है और शरीर का तापमान जो है हमारा मस्तिष्क में एक और सिस्टम होता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस जो है शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो इस पर प्रभाव पड़ता है। जब शरीर में हमारा तापमान अधिक होता है तो शरीर में अधिक पसीना निकलता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिसके कारण से शरीर में कमजोरी, थकान, चक्कर आना और शरीर में डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण मिलते हैं।
0: ओके सर, जैसे कि हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की, तो सर हीट स्ट्रोक और सामान्य गर्मी लगने में क्या अंतर होता है?
1: इसमें जो है सामान्य गर्मी लगने पर व्यक्ति को सामान्यतः कमजोरी होती है, पसीना आता है और कई बार चक्कर आने लगते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक की बात करें तो ये एक गंभीर स्थिति बनती है। इसमें शरीर का तापमान जो है अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति जो है बेहोश की अवस्था में या सिंकोप की अवस्था में रहता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है।
0: ओके सर, जैसे कि इस मौसम में जो अभी कड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इस दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत किन्हें होती है?
1: यहाँ पर गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, खेत में काम करने वाले मजदूर और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को ही शरीर को मेंटेन करने की हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। इनमें जल्दी सिम्टम दिखने लगते हैं।
0: सर, यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना या उल्टी, कमजोरी, बेहोश जैसा महसूस हो तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए?
1: उसे सबसे पहले क्या है, उनको छांव में ले जाना चाहिए या ठंडी जगह पर उसको ले जाना चाहिए। तुरंत उनको पानी पिलाना चाहिए या ORS उनको देना चाहिए। शरीर को गीले कपड़े से पोंछना चाहिए या स्पॉन्जिंग करना चाहिए और अगर गंभीर स्थिति हो जाती है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए।
0: ओके सर, गर्मी में जैसे शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं?
1: इसमें हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमको प्यास अधिक लगती है, मुंह सूखने लगता है, शरीर में कमजोरी होने लगती है, कई बार चक्कर भी आने लगते हैं और जो है पेशाब का जो है प्रोडक्शन कम, यानी यूरिन का प्रोडक्शन भी कम होता है और कुछ लोगों में जो है सिर दर्द के लक्षण इसमें मिलते हैं।
0: ओके तो फिर सर, जैसे नवतपे के दौरान रोजमर्रा के खान पान में किन चीजों का खास ख्याल रखें या क्या चीजें शामिल करें?
1: यहाँ पर बेसिकली हमारा जो है डिहाइड्रेशन के सिम्टम ज्यादा मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने पानी को अधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और हमारा जो खान पान है उसमें हमें जैसे नींबू पानी का सेवन करना है, छाछ का सेवन करना है, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं और लस्सी है और कुछ मौसमी फल जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो इनको अपने भोजन खान पान में सेवन करना है और हमको अपना भोजन जो है हल्का और आसानी से पचने वाला रखना है।
0: यानी हम ज्यादा हैवी खाना ना खाएं और पानी का लेवल बना के रखें और ज्यादातर ऐसे फल और इन चीजों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: सर, जो लोग खेतों या खुले में काम करते हैं जैसे मजदूर हो गए या, तो वे खुद को लू से कैसे बचाएं?
1: अभी जो है, अभी हम यहाँ पर टेम्परेचर क्या है इस समय ज्यादा है, तो व्यक्ति को अपना अगर खुद का काम है तो उसको सुबह शाम के समय करने का कोशिश करना चाहिए। अगर वो बाहर फिर भी उसको निकलना पड़ रहा है तो सिर पर कपड़े का धारण करना चाहिए, उसको टोपी लगाना चाहिए, हल्के कपड़े पहन

0: चाहिए, और बीच बीच में जो है उसको पानी पीते रहना चाहिए।
1: सर जैसे खास तौर पे एक जैसे ये तो हमने बात करी जिनको बाहर निकलना पड़े, लेकिन जिन्हें लू लग जाए तो वो एट अ टाइम क्या उन्हें करना चाहिए बचने के लिए?
0: जिन्हें लू लग जाए उन्हें अंडरटाइम जो है डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना चाहिए, मतलब
1: जी
0: अधिक पानी पीना है उन्हें, उनको ORS देना है, और अगर उसमें गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है जैसे
1: जी
0: उसको डायरिया अधिक हो रहा है या वॉमिटिंग अधिक हो रही है तो उसको हॉस्पिटलाइज होना है, उसको
1: ओके
0: नजरअंदाज नहीं करना है।
1: जी। सर जैसे गर्मी में, अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो लोग ज्यादातर ठंडे पानी का सेवन कर लेते हैं, लोग धूप में से आके सीधा ठंडा पानी पीते हैं या हवा लेने लगते हैं, तो ये कितना नुकसानदायी हो सकता है?
0: ये नुकसानदायी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होना देना चाहिए, उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए। अगर हम तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं तो गले में खराश जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो भी अन्य रोग को उत्पन्न कर सकते हैं।
1: ओके। गर्मी के मौसम में सर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं इनकी देखभाल के लिए परिवार वालों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए सर?
0: बुजुर्ग और बच्चों के लिए जो है इन्हें बाहर खेलने जाने के जैसे धूप में अधिक देर तक नहीं बैठना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इन्हें पानी पिलाना चाहिए, इनको हल्का भोजन देना चाहिए, और जो घर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना चाहिए, मतलब सामान्य अवस्था में रखना चाहिए, और अगर किसी कमजोरी और बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। और आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं तो बच्चे को किसी बंद कमरे में अकेला नहीं छोड़ना है, या गाड़ी में भी आप जा रहे हैं तो उसको बंद गाड़ी में नहीं छोड़ना
1: सर इस मौसम में क्या कोई प्राथमिक चिकित्सा टीका या जरूरी दवाइयां घर में रखनी चाहिए?
0: है। इसमें जो है सभी को अपने घर में ORS है, ग्लूकोज है, इनको रखना चाहिए। शरीर के तापमान को नापने के लिए हमें थर्मामीटर रखना चाहिए, और जो बुखार की आवश्यक दवाइयां हैं जैसे पैरासीटामोल है उसको हमारे पास होना चाहिए, या डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है वो भी उसके पास होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों में जो बीमारियां हैं उनको समय से ट्रीट करना बहुत जरूरी है।
1: सही। सर लोग अक्सर कहते हैं कि प्यास लगे तभी पानी पिए, ये किस हद तक ठीक है, या फिर हमारा वाटर लेवल हमें मेंटेन करते रहना चाहिए?
0: ऐसा जरूरी नहीं कि हमें प्यास लगे तभी पानी पीना है,
1: जी
0: अभी गर्मी का मौसम है, इस समय क्या है हमें प्यास बाद में लगती है और शरीर में डिहाइड्रेशन पहले होने लगता है, तो इसलिए
1: सही
0: हमें नियमित समय अंतराल के बाद पानी पीते रहना चाहिए।
1: सर। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या महत्वपूर्ण संदेश रहेगा ताकि वो नौतपे के दौरान स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें?
0: मैं सभी श्रोताओं से यही आग्रह करना चाहूंगा कि वो धूप से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, उनको हल्का भोजन करना है, और अगर उनमें लू के कोई भी या हीट स्ट्रोक के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, समय पर चिकित्सक की परामर्श लेना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपने बेहद उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। उम्मीद करते हैं लोग इन सावधानियों को अपनाकर नौतपे और भीषण गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सर।
2: तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण बातचीत के बाद अब आपको हम ले चलेंगे उस दुनिया में जहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती है, जहां जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि परिवार होते हैं, जहां मिट्टी नदी पहाड़ और प्रकृति से रिश्ता केवल जरूरत का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली की ओर। भारत की जनजातियां हमारी संस्कृति का वह रंग है जो आधुनिकता की तेज रोशनी में भी अपनी सादगी और परंपराओं की चमक बनाए हुए है, चाहे मध्य प्रदेश के कोंड और भील हो, झारखंड के संथाल या उत्तर पूर्व के नागा समुदाय। हर जनजाति की अपनी अलग पहचान, अपनी बोली, अपने गीत और अपनी जीवन शैली है। इन समुदायों का जीवन प्रकृति के बेहद करीब होता है। उनके घर मिट्टी लकड़ी और बांस से बने होते हैं। भोजन में मोटा अनाज, जंगल के फल, कंदमूल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। लेकिन सबसे सुंदर बात उनका सामूहिक जीवन। यहां मैं से ज्यादा हम मायने रखता है। गांव का हर सुख दुख सब मिलकर बांटते हैं। जनजातीय संस्कृति में संगीत और नृत्य जीवन का अभिन्न हिस्सा है। फसल कटाई हो, विवाह हो या कोई त्योहार, ढोल मांदर और बांसुरी की धुन पर पूरा गांव झूम उठता है। उनके लोकगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास, प्रेम, संघर्ष और प्रकृति के प्रति सम्मान की कहानी भी कहते हैं। और अगर हम उनके त्योहार की बात करें तो भगोरिया, कर्मा, सरहुल जैसे पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का माध्यम है। आज आधुनिकता के दौर में बहुत कुछ बदल रहा है, जंगल सिमट रहे हैं, लेकिन जनजातीय समुदाय अब भी हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे रखा जाए। वे हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि सिर्फ बड़े शहरों और ऊंची इमारतों में नहीं है बल्कि उस जीवन में भी है जहां इंसान धरती से जुड़ा रहता है। तो आइए हम उनकी संस्कृति, कला, भाषा और परंपराओं का सम्मान करें, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में है। तो दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

तो दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ कार्यक्रम युववाणी यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपने रेडियो मित्र साहिल खान को। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। शाम 6:30 पेश करेंगे फिल्म संगीत। 6:50

मिनट पर गीत गजल भजन और कव्वालियों का मिला जुला कार्यक्रम सबरस। शाम 7:20 पर पेश करेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सामूहिक कृषि, चर्चा होगी जायत की फसलों में सिंचाई प्रबंधन, इस विषय पर श्रृंखला के अंतर्गत बातें होंगी खेती किसानी की। इन सबके अलावा मौसम का हाल और बाजार भाव। रात 8 बजे आपके संदेश आपके गीत, रात 8:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम साज और आवाज, रात 9 बजे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होंगे, रात 10 बजे पेश करेंगे आपके मीत ये गीत, रात्रि 10:30 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विदुषी प्रभा त्रे का गायन, राग होगा मधुवंती। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए अब रुख करते हैं कल की सभा की ओर। हमारी कल की सभा की शुरुआत होगी कल सुबह 5:55 पर वंदे मातरम के साथ। सभा की शुरुआत में कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। 6:30 पर कार्यक्रम चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान। स्वर होगा रविंद्र साठी, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का। सुबह 6:45 पर रामचरण यादव और साथियों से आप सुनेंगे कुछ लोकगीत कार्यक्रम लोकरंजनी में। कार्यक्रम यादों के झरोके से ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 पर। 7:50 पर आप सुनेंगे स्थानीय सूचनाओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे। कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल, ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 8:30। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। 9:10 पर आकाशवाणी द्वारा निर्मित पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित श्रीमती एन राजम से बातचीत होगी। ये कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे सुबह 9:35 से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कल सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 10:05 पर। सुबह 10:30 आप सुनेंगे महिलाओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। इसके अंतर्गत आज की बात होगी सुरक्षित मातृत्व और प्रसूति फिस्टूला से बचाव, इस विषय पर मुलाकात में सुरक्षित मातृत्व और प्रसूति स्वास्थ्य है, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से बातचीत। बागवानी और सुझाव होगा घर की बाड़ी में सब्जी उत्पादन, इस विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुबह 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से। शाम 5:30 युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम पेश करेंगे युववाणी। इसके अंतर्गत आज की बात होगी स्वच्छता बहुत सारी बीमारियों की अचूक दवा है, इस विषय पर। अवसर में प्रतियोगी परीक्षाएं, नए कोर्सेस, छात्रवृत्ति, रोजगार। स्तंभ में सेहत मंत्र होगा पर्याप्त पानी पीने के फायदे, इस विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे कल के आकर्षण और फिल्म संगीत। कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे कल शाम 6:05 पर।
6:30 पर पेश करेंगे।

फिल्म संगीत 6:50 पर गीत गजल भजन और कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस होगा। 7:20 पर पेश करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसके अंतर्गत आज की बात होगी रिश्तों को निभाना सीखें। सामयिक कृषि कार्य होगा गन्ना फसल की करें सही देखरेख इस विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे लोक संगीत श्रृंखला के अंतर्गत बातें होंगी खेती किसानी की। इसके अलावा आप सुनेंगे कल के आकर्षण, मौसम का हाल और बाजार भाव। कार्यक्रम बातें नई गीत नए ये कार्यक्रम होगा कल रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 आप सुनेंगे युगल गीत। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रात्रि 9:00। मन भावन कार्यक्रम हम पेश करेंगे कल रात 10:00। रात्रि 10:30 सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सलीम मर्चेंट से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और रात्रि 11:10 पर हमारी कल की सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधली। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

इस संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थीं अनुराधा पाटवाल। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। ये पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत फिल्म जवाब हम देंगे से। गीत रचना है एसएच बिहारी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज है शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

ये फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीरो से। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत में आवाज है लता मंगेशकर और मनहरत की।

लीजिए कार्यक्रम में पेश है अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का से। गीत रचना है मजरूह की, संगीत आनंद मिलिन का और आवाज है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

और ये फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब ये अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दयावान से। गीत रचना है अजीज कैशी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम सबरस।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सबरस अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और ट्विशा शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकरोधी, नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है और अगले 5 साल में इसे फिर से दोगुना करने का लक्ष्य है।
1: यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है।
2: हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 किया। बहुत जल्दी हमारी 100 साइट जो है रामसर साइट हो जाएंगी। इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान की जानकारी भी दी।
2: हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर तीसरा साल चल रहा है, हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं इसको प्रतिबद्धता के बलबूते तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक लगभग 3,000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्यप्रदेश नंबर 1 पे है।
0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया जिसमें पहले सिर्फ 8 डिब्बे थे। इस मौके पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण और जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जाएंगे। दौरे से पहले श्री सिंधिया ने समर्थकों से अपील की कि उनके स्वागत में कोई पेट्रोल डीजल वाहन न जलाए और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ईंधन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जून को 12 राज्यों की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिसमें प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर बैठे सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है जिसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और डॉ सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह आज शाम जबलपुर जिला

कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। इससे पहले समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत की याचिका भी वापस ले ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने आज तुषा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं, जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में भोपाल एम्स में होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। धार में भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर घोषित करने के बाद आज पहले शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए फैसला दिया था। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती हुई। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और करीब 1800 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने अशोकनगर कलेक्टर को चंदेरी के गाड़िया लोहार परिवारों को जल्द आवासीय पट्टे दिलाने के निर्देश दिए हैं। गाड़िया लोहार समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मिलकर अपनी मांग रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी पात्र परिवारों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में ईएसआईसी के तहत पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवार को अब कैशलेस आयुष चिकित्सा का फायदा मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग और आयुष विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में ये एमओयू साइन किया गया। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा 25 मई से नौतपा शुरू होगा और उसके बाद गर्मी और भी बढ़ने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने आज शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे मध्य क्षेत्र कार्यकर्ता विकास वर्ग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सदुपयोग पर बल दिया है। बैतूल कलेक्टर ने आज रानीपुर पुलिस थाना म्यूजियम में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की। झाबुआ कलेक्टर आज राणापुर विकासखंड के ग्राम समोई में संतृप्ति शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर इच्छापुर हाईवे निर्माण का निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राजगढ़ जिले की 23 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के लिए जारी भर्ती की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। शहडोल के केशवाही वन परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। खंडवा में आगामी त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। सीबीएसई ने 12वीं के आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में प्रदेश के 6 खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और आईपीएल में अब से कुछ देर में हैदराबाद में सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा, सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और तुषा शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतुल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:20 हुए हैं और लीजिए अब पेश है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम ग्राम सभा लेकर हाजिर है अर्पणा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा राम राम। और श्रोताओं, आपको बता देते हैं कि आज के ग्राम सभा कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। तो हमारी जो आज की बात है उसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इसके साथ साथ आपको प्यारे प्यारे लोकगीत भी सुनवाएंगे और आज के मेहमान से भी बात कराएंगे, और जो हमारी आज की कृषि चर्चा है वो भी करेंगे, और जो चलते चलते करेंगे हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। तो ठीक, अब से 8 बजे तक हमारे साथ बने रहिए, और अब चलते हैं और करते हैं आज की अपनी बात। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 22 मई है, और हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के संरक्षण और पृथ्वी पर इसके महत्व के प्रति विश्व भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। श्रोताओं, जैव विविधता के बिना हम सभी का जीवन चक्र सही नहीं होगा, क्योंकि ये पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व रखती है। हम यदि साधारण शब्दों में कहें तो कि पृथ्वी पर जीवित जीवों का परिवर्तन या परिवर्तनशील जैव विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे और प्राणियों की प्रजातियों में घटित विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को रोकना है। जैव विविधता के संरक्षण को करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति चाहे वह कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, सभी का अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान है। और यदि हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधे बहुत सारी संख्या में होते हैं, और इसमें बहुत सारी प्रजातियां होने के कारण यह सभी जीवन रूपों के लिए जो प्राकृति की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक स्थिरता को बनाए रखती है। तो इस तरह से यदि जैव विविधता की हम बात करें तो उसके दिन को मनाने का खास उद्देश्य यही है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की बात, और आज की बात के बाद चलते हैं मनोरंजन की ओर, और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: लक्ष्मण को लागो बाण, हनुमान संजीव लइयो। रामचरण यादव और साथियों की आवाज में अभी सुना आपने ये लोकगीत, और इस लोकगीत के बाद चलते हैं और बात करते हैं आज के मेहमान से।
1: देख रहे हैं अभी आम का सीजन चल रहा है और हमें बाजार में बहुत अच्छे अलग अलग वैरायटी के आम मिल रहे हैं, और जो हमारे किसान भाई हैं वो आम के साथ साथ बागवानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं। तो श्रोताओं, इसी तारतम्य में हम बात करते हैं आज बैतूल बाजार के कृषक श्री भूवेंद्र किशोर ओमकार जी से। तो ओमकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्राम सभा में। राम राम।
2: राम राम।
1: तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जैसे प्रॉपर आपका खेत बैतूल बाजार में है या उससे बाहर है?
2: मेरा निवास बैतूल बाजार का है और हमारी जो खेती है उधर 3 किलोमीटर अरुण एक गांव पड़ता है
1: जी,
2: बालाजीपुरम के पीछे में, वो गांव का वहाँ पर मेरी खेती है
1: जी। तो आपकी कितनी खेती है और किस तरह की जमीन है?
2: मेरे पास सिंचित जमीन 6 एकड़ है और काली, गहरी काली और सिंचित जमीन है, और लगभग 6 एकड़ और है लेकिन थोड़ी सी पानी कमी है
1: जी। तो जैसे आपने बताया कि कुछ में पानी की कमी है, कुछ सिंचित है, तो जब आप फसलों का चुनाव करते हैं वो, या जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ बहुत प्रकार के आम की वैरायटी भी है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि यदि फसलों का चुनाव करते हैं तो वो जमीन में कौन सी फसल लगाते हैं
2: आप? जैसे अपन अपने जो आम जो फलोद्यान की जो फसलें होती है वो भारी जमीन में भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर कुछ चीजें नहीं होती है, जैसे फसलें नहीं होती है, तो वहाँ आप फलोद्यान की खेती कर सकते हैं
1: जी।
2: और हमने की है, तो मैंने जो भी हमारी

0: आमला पंखा के पास में थोड़ी हल्की कम पानी वाली जमीन है, तो वहाँ पे मैंने 2 एकड़ में अपने आम के बगीचे लगाए जो वर्तमान में आने लगे हैं
1: जी।
0: और उसको मैं मतलब पानी की कमी होने के कारण मैं टैंकरों से पानी बुलवा के और उसको सिंचित करता हूँ
1: जी,
0: जो आज मुझे फल देने लगे हैं
1: जी।
0: तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ऐसा नहीं है कि बहुत पानी वाली जमीन में, कम पानी वाली जमीन में भी किसान फलों की खेती कर सकते
1: जी। और आपके यहाँ सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं?
0: सिंचाई का दीदी मेरे यहाँ ड्रिप इरिगेशन है और उसके बाद में मैं फ्लड भी पानी देता हूँ
1: जी।
0: और लेकिन ज्यादातर मैं ड्रिप से ही फलों की मतलब पौधों की सिंचाई करता हूँ
1: जी। तो इसका क्या कारण है जिससे आप ड्रिप से जो सिंचाई करते हैं?
0: ड्रिप से पानी देने का मतलब ये है कि प्रॉपरली पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही मिलता है, वेस्ट नहीं जाता है
1: जी।
0: और ये एक पानी को बचाने का एक बहुत अच्छा आज के वैज्ञानिक इसमें माध्यम है अपना कि आप पानी बचाओगे तो ड्रिप से ही आपकी खेती सक्सेस होगी
1: जी। तो जैसे आपने बताया कि पानी बचाना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपके जो वहाँ की जमीन है उसमें वहाँ का जल स्तर कैसा है और हमें जल संरक्षण करना कितना आवश्यक है?
0: जल संरक्षण तो बहुत जरूरी है क्योंकि आप भविष्य में सबसे बड़ी समस्या जल की आने वाली है
1: जी।
0: और अपन जिस हिसाब से अभी जलों का दोहन कर रहे हैं, 1000 फीट 800 फीट ऐसे पानी निकाल रहे हैं, ये भविष्य में कम ही होना है, ये बढ़ना नहीं है
1: जी।
0: इसीलिए अपने को ड्रिप इरिगेशन की ओर अपने को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा
1: जी।
0: और मैं तो वर्तमान में अभी कर रहा हूँ और मेरे को लाभ भी बहुत मिल रहा है इसका
1: जी।
0: और हमारे यहाँ के जल स्तर की बात करूँ तो हमारे यहाँ क्या है कि नहर छूटती है
1: जी।
0: तो नहर की वजह से हमारे वाटर लेवल बढ़ जाते हैं, फिर भी हम उसको अपने आप में ये सोचते हैं कि पानी कैसे भी बचाए, पानी बचाना ही हमारे आगे के लिए हमको फायदा होता है
1: जी।
0: तो हम अभी जैसे पानी हमारे पास बच जाता है तो हम मूंग की खेती कर लेते हैं और ये गर्मियों में हम अच्छी खासी मूंग का उत्पादन ले लेते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से हमको ये फायदे मिलते हैं
1: जी। तो अभी के समय में आपके यहाँ मूंग की स्थिति कैसी है?
0: मूंग हमारी 10 मार्च को बुआई थी, अभी लगभग मूंग हमारी कटाई के स्थिति में आ गई है, 2-4 दिन में हम कटवाएंगे और बहुत अच्छी फसल है इस बार मूंग की
1: जी। तो लगभग कितनी मूंग हो जाएगी आपको और आपने कितनी बोई थी?
0: मैंने 30 किलो मूंग बोई थी 3 एकड़ में
1: जी।
0: तो मुझे लगभग अनुमान है कि 20 क्विंटल के आसपास मेरे मूंग का उत्पादन होगा
1: जी। मतलब आपको फायदा
0: जी,
1: होने वाला है
0: भी।
1: तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह से, एक प्रोसेस जानना चाहूंगी कि जब आपको इतनी अच्छी मूंग होने की उम्मीद है तो किस तरह से उसकी देखरेख की थी और कैसे लगाया था?
0: सबसे पहले तो हमने उसको डोरा पद्धति से मतलब 18 इंच पे बुआई करी थी इसकी, जो ताज से ताज की दूरी है और बीज दर की मात्रा बिल्कुल लिमिट में रखी थी, इस वजह से वो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ किया। उसके बाद 2 स्प्रे करे थे क्योंकि गर्मियों के दिन में थोड़ा कीट वगैरह की ज्यादा वो रहती है, तो 2 स्प्रे करे थे और कुछ टानिक के स्प्रे करे थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के, तो उसका हमको बराबर बेनिफिट दिख रहा है
1: जी।
0: जैसे अपन पोषक तत्व तो डालते हैं तो समय समय पे अपने को कीटनाशक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि गर्मियों के दिन में कीटों का बहुत अधिक प्रकोप होता है, तो हम लोग जैविक में एलोट्रेप अपने ये सब कुछ लगवा के कुछ ऐसे संसाधन बन गए अभी और अपनी जो नीम ऑयल वगैरह का हम लोग स्प्रे करते हैं तो हमको उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है
1: जी।
0: तो हम उस हिसाब से हमारी जो मूंग का उत्पादन है पूरा जैविक तो नहीं बोल सकते 100%, लेकिन फिर भी कोशिश जहाँ तक हो सके करते हैं
1: जी। और जैसे कि अब आप बैतूल बाजार के ही कृषक है और बैतूल बाजार में ही रहते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र से आपको किस तरह की मदद मिलती है?
0: कृषि विज्ञान केंद्र तो हमारे लिए वरदान है, हम हमेशा जाते हैं, हमारे को बुलाते हैं
1: जी।
0: और लगभग मेरी तो ये है कि मैं एक भी मीटिंग मिस नहीं करता हूँ और उसका मुझे लाभ भी मिलता है, वहाँ से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है और बारपाटे सर है, उसके पहले वर्मा सर थे वो रिटायर हो गए, लेकिन और भी एक मैडम है दुबे मैडम, तो हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती है
1: जी। तो आपको वहाँ से मतलब जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं या जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे आपको फायदा होता है?
0: फायदा तो बहुत ज्यादा होता है और क्या होता है कि हर व्यक्ति को कृषि के संबंधित जानकारी नहीं रहती, तो अपने कुछ कमियां रहती है तो अपन वहाँ जाते हैं पूछते हैं तो हमको बहुत सारी समस्या का समाधान मिलता है
1: जी।
0: तो उससे हम पूरा समाधान करके और हमारी फसलों से लाभ लेते हैं
1: जी। तो ओंकार जी, जैसे कि हम लोग ये मूंग की मतलब जायद की फसल की बात कर रहे थे, पर अब जैसे कि खरीफ की फसल का समय आने वाला है और हमारे किसान भाई जो रहते हैं वो कोई भी खेती लेने के पहले पूर्व प्रबंधन करते हैं, तो इस समय हमारे जो भी किसान भाइयों का खेत खाली है तो खेत बनाने में लगे हैं, तो आप अभी किस तरह से खरीफ फसलों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं?
0: खरीफ फसल में हमने अभी प्लाव कर दिए हैं 4 एकड़ में
1: जी।
0: और प्लाव करने के बाद में उसमें थोड़ा सा कुछ दिनों बाद फिर रोटावेटर मारेंगे, रोटावेटर मार के उसको प्लेन करके और फिर हमारी सोयाबीन की तैयारी करें।
1: तो सोयाबीन का बीज आपने मार्केट से लिया या घर में?

0: सोयाबीन का बीज हम घर में तैयार करते हैं, अच्छा ग्रेडिंग करके रखा हुआ है। पिछले साल बोए थे तो उसी का हमने ग्रेडिंग करके और बढ़िया अच्छा उसको उगा के भी देख लिया तो बढ़िया सा निकल गया है,
1: जी
0: तो हम उसी को बोएंगे।
1: जी तो घर में ही आपने बीजोपचार
0: जी जी
1: करके और बीज की
0: बीजोपचार
1: क्वालिटी
0: करके
1: देख ली जी। और जैसे कि गन्ना और मक्का, इसकी भी फसल आप लेते हैं?
0: जी, मैं गन्ने अभी मेरे पास में है
1: जी
0: और मक्का भी बोते हैं, लेकिन मक्का के लिए हमारी थोड़ी सी समस्या ये है कि हमारे सुअर का थोड़ा सा आतंक है बहुत ज्यादा है,
1: जी
0: इस वजह से मैं तो उसको थोड़ा सा वो करता हूँ। क्या होता है गन्ने का वजह से सुअर को उसमें ज्यादा आवास रहता है,
1: जी
0: तो इसलिए हम लोग गन्ने की खेती को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं।
1: जी और धान की खेती भी?
0: धान करते हैं, धान की खेती हम घर में खाने के लिए जो चावल लगते हैं
1: जी
0: उसके लिए हम धान की खेती
1: तो
0: थोड़ी
1: कौन
0: करते हैं।
1: सा चावल
0: जो
1: लगाते
0: वो हम
1: हैं?
0: लोग बासमती बोता था मैं अभी तक,
1: जी
0: अब इस बार देखते हैं वो खुशबू है एक अच्छी वैरायटी
1: जी
0: तो वो भी अच्छी बासमती रेंज की है तो वो बोऊंगा।
1: जी तो जैसे धान की खेती में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या खेत का चुनाव भी अपने को उसी तरीके का
0: हाँ,
1: करना होता
0: हमारे
1: है?
0: पास जो जिसमें पानी रुकता है, जैसे थोड़ा सा पानी अधिक जिसमें जहाँ जमा होता है वहाँ हम धान की खेती करते हैं। हाँ,
1: तो धान को किस तरह से रोपित करते हैं फिर आप?
0: धान को हम पहले रोपा डाल देते हैं, अभी रोपा डाला हुआ है, उसके बाद फिर जैसे थोड़ी सी अच्छी बारिश हो जाएगी 15-20 जून के आसपास, जब थोड़ी तेज बारिश हो जाएगी उस समय उसको रोपित कर देते हैं।
1: जी और इसके साथ साथ जैसे आपके खेत में आपने बताया कि आप बागवानी भी करते हैं, फूलों की भी खेती है आपके यहाँ, आम भी कई वैरायटी के लगे और दूसरे फल भी आपके यहाँ लगे हैं, तो अभी के समय में हम सबसे पहले तो आम के बारे में बात करेंगे क्योंकि सीजन भी आम का ही चल रहा है,
0: जी,
1: तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपके खेत में कितने प्रकार के आम लगे?
0: मैं अभी आपको थोड़ा सा मेरी पुरानी बात बता दूं, हमारे पिताजी से जो मुझे प्रेरणा मिली है, उनको
1: जी
0: आम का बहुत शौक था,
1: जी
0: तो उन्होंने मुझे एक शिक्षा देके गए हैं कि आम एक अपने बच्चों से बढ़कर एक आम का पौधा आपकी सेवा कर सकता है, ये उन्होंने मुझे ज्ञान देके गया। तो आज की स्थिति मेरे पास लगभग 300 पौधे हैं आम जो आने लगे हैं और लगभग 35 वैरायटियों का मेरे पास कलेक्शन है, जो
1: जी
0: लगभग हमारे बैतूल जिले में सब जो होती है मैं सारी वैरायटी मेरे पास है।
1: जी
0: और एक आम तो मेरे पास अभी वर्तमान में मैंने पचमढ़ी मेले में भिजवाया था, 2.5 किलो का उसका वजन आता है
1: जी
0: और उसको हमने हमारे तरफ से तो नाम रख दिया है दामिनी,
1: जी
0: और वो जो वैज्ञानिकी से हमको नाम पता लगा तो उन्होंने बताया कि ये मलगवा करके वैरायटी आती है,
1: जी
0: तो इस तरह से मेरे पास 30-35 वैरायटियां हैं।
1: जी तो विशेष जो वैरायटी जो ज्यादा बाजार में विक्रय होती है वो कौन कौन सी
0: विक्रय
1: है?
0: में अभी हमारे वर्तमान में सबसे पहले अभी गाजरा आम चल रहा है, वो निकल रहा है,
1: जी
0: और उसके बाद फिर हमारा दशहरी निकलेगा, लंगड़ा निकलेगा, फिर आम्रपाली है, मल्लिका है, गाजरा अपने पास फजली निकलेगा, ये ऐसा अल्टरनेट चलते हैं, लास्ट में सबसे पास लास्ट में हमारे पास तोतापरी खत्म होता है जो हम रक्षाबंधन के समय उतारते हैं।
1: तो मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि अब फल लगे हुए, फलों से लदे हुए पेड़ है आपके, तो इस समय आप पेड़ों की देखरेख किस तरह से करते हैं?
0: पेड़ों की देखरेख मेरे पास पूरे ड्रिप में ड्रिप इरिगेशन का पूरा व्यवस्था है, तो उससे मैं पानी देता हूँ और उसी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब जो पोषक तत्व रहते हैं उसी से देता हूँ।
1: जी तो वो किस समय देना होता है, अभी देना होता है या फल लगने के पहले?
0: फल लगने के पहले भी और जब फल टूटेंगे उसके बाद भी हम व्यवस्था करते हैं, अभी उसके बाद फिर गोबर खाद ये वो सब जितने भी साथ जारी डलवाते हैं।
1: और इसके साथ क्या पेड़ों की छटाई कटाई की भी व्यवस्था करनी है?
0: हाँ, पेड़ों की कटाई छटाई विशेष है, जब उसके जो अपन पेड़ से जब फल टूट जाते हैं
1: जी
0: तो उस टहनियों को फिर हम कटिंग शटिंग करवाते हैं, तो अगले
1: जी
0: साल फिर हमको उसमें बहुत सारे फल का उत्पादन मिलता है, ये उसकी प्रक्रिया ही है।
1: जी और फूलों में कौन कौन से फूलों की खेती है?
0: फूलों में तो मैं अभी उद्यानिकी विभाग से जुड़ा हूँ तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी थी, तो मैं 3 साल से गेंदे खेती कर रहा हूँ और अच्छा खासा लाभ अर्जित कर रहा हूँ, और गेंदा शादी का सीजन, त्योहार का सीजन हर समय डिमांड रहती है,
1: जी
0: तो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा खासा लाभ किसान लोग ले सकते हैं।
1: जी तो आप लगभग कितने एकड़ में गेंदे की खेती करते हैं और किस समय बोते हैं?
0: लगभग मैं साल भर गेंदा लगाता हूँ
1: जी
0: और ज्यादातर तो मैं जो गाइडलाइन मेरी ऐसी रहती है कि जो कैलेंडर के हिसाब से कि आपको कब त्योहार आ रहे हैं, कब शादी आ रही है, उस हिसाब से मैं पौधा रोपित करता हूँ,
1: जी
0: तो मुझे अच्छा उत्पादन मिलता है और रेट भी उस समय बहुत बढ़िया मिलता है, डिमांड भी अच्छी रहती है।
1: जी पर जो गेंदे की फसल होती है ये बहुत नाजुक फसल होती है, इसमें सबसे ज्यादा कीटों का शायद प्रकोप होता है।
0: कीटों का प्रकोप के हिसाब से हमको मैं उसको लगवाता हूँ ताकि हमारे जो जो हम जिस फसलों को हम खाते हैं जैसे सब्जी है, वेजिटेबल है, तो वो जो कीट है वो फूलों की ओर आकर्षित होते हैं, तो हमारी सब्जियां सुरक्षित रहती है, जैसे बैगन है, टमाटर है, उनके आसपास ही मैं लगवाता हूँ, तो हमको ज्यादा इनमें कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती सब्जियों में, इस वजह से मैं गेंदे खेती कर रहा हूँ।
1: तो कितने समय रहता है एक पौधा?
0: एक पौधा लगभग 4 से 5 महीने तक उत्पादन देता है।
1: और जैसे आपने अभी बताया कि आप सब्जियों की खेती करते हैं और वहीं पर आप आसपास फूलों की भी खेती करते हैं जिससे एक दूसरे का फायदा मिलता है
0: जी,
1: ना,
0: जी, जी।
1: तो इससे

0: मुझे ध्यान आता है कि मिश्रित खेती कितनी जरूरी है कृषक भाई के लिए।
1: बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं अभी 50 रुपए किलो में फूल मेरे गेंदे के बिक रहे हैं, वहीं अभी बैंगन मेरे 5 रुपए 7 रुपए किलो जा रहा है
0: जी।
1: तो मेरा जो बैलेंस है फूल कवर कर दे रहा है
0: जी।
1: तो ये किसानों को के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मिश्रित खेती से किसी भी एक फसल से आपका बैलेंस बना हुआ रहेगा
0: जी।
1: तो आप घाटे में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप खेती करोगे तो आपको फायदा होने वाला हो जाएगा।
0: और फसल चक्र से हमारे खेत में क्या फायदा होता है?
1: फसल चक्र तो बिल्कुल होना ही चाहिए। फसल चक्र क्या होता है कि एक फसल दूसरे फसल के लिए कुछ न कुछ पोषक तत्व तो छोड़ के जाता है,
0: जी।
1: ये हमको विज्ञान केंद्र से जानकारी मिलती है
0: जी।
1: तो इस वजह से हम लोग हर साल कुछ न कुछ फसल चक्र चेंज करते हैं। कभी सोयाबीन बोते हैं तो सोयाबीन के बदले वहाँ फिर अगले सत्र में हम धान बोते हैं
0: जी।
1: उसके बाद फिर कभी गन्ना बोते हैं, इस तरह से हमारा अल्टरनेट चलता है
0: जी। और भूवेंद्र किशोर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे अब हमारे किसान भाई आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आधुनिक खेती ज्यादा से ज्यादा यंत्रों का उपयोग करके की जाती है, तो आप कौन कौन से आधुनिक यंत्रों का उपयोग अपनी खेती में करते हैं?
1: मैं जैसे आधुनिक यंत्र में जैसे मिनी ट्रैक्टर है मेरे पास, ट्रैक्टर दो बड़ा भी है मिनी भी है, लेकिन मिनी ट्रैक्टर से मेरे को बहुत सारे बेनिफिट ये है कि उसका छोटा रोटर बैठा है, बीच में जो भी कचरा होता है नींदा होता है मैं उसमें चलवा के उसको निदान कर लेता हूँ। उसके बाद फिर उससे मट्टी, जैसे गन्ने में हमको मट्टी चढ़ाना पड़ता है, यानी लगभग किसानी के जो लेबर वर्क करते थे वो छोटा ट्रैक्टर मेरे सारे काम कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आज आधुनिक तकनीक से कुछ न कुछ मशीनरी छोटी जो अभी यंत्र आ रहा है इसका उपयोग किसान को करना पड़ेगा। और ये जो अभी आधुनिक में आप तो इस ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें, सोलर का उपयोग करें, उसके बाद स्प्रिंगलर जो है उसका उपयोग करें, ये सब आज आधुनिक खेती में बहुत अपने लिए लाभकारी चीजें जितने भी यंत्र बने हुए हैं वैज्ञानिकों ने बना के दिए है, इसका उपयोग किसानों करना चाहिए। मैं भी करता हूँ
0: जी। और चलते चलते आप हमारे सभी किसान भाइयों से और सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं अपने सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि खेती जो है उत्साह पूर्वक करिए और खेती में नर्वस होकर खेती ना करिए, क्योंकि खेती अगर आप सोचोगे कि मैं उत्पादन नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, फलाना हो रहा, ये हो रहा, तो ये आज की युवा पीढ़ी इस ओर तो विचलित हो रही है। मैं युवा पीढ़ी को बोलना चाहूंगा कि खेती को अगर आधुनिक तकनीक से करे तो बिल्कुल लाभ का धंधा है और बिल्कुल उसमें आप अपना पूरा समय दीजिए और पूरा लाभ अर्जित करिए
0: जी। और भूवेंद्र किशोर जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और हमसे खेती बाड़ी से संबंधित आपके इतने विचार बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।
1: जय राम जी।
0: श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे श्री भूवेंद्र किशोर ओमकार जी से और इसके बाद चलते हैं मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाते हैं संदीप चौबे और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोक भजन।

संदीप चौबे और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये लोक भजन, और इस लोक भजन के बाद चलते हैं और करते हैं अपनी आज की कृषि चर्चा। किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में जब हमारे किसान भाइयों के पास थोड़ा बहुत पानी होता है तो उस समय हमारे किसान भाई जायद की फसल लेते हैं, और रबी की फसल के बाद जो हमारा खेत खाली होता है उस समय जायद की फसल ली जाती है, और उसके बाद फिर खरीफ की फसल ली जाती है। तो यानी रबी और खरीफ के बीच की जो फसल है उसको हम जायद की फसल कहते हैं। और हमारे जो किसान भाई है इस समय जैसे कि कम पानी से पकने वाली फसलों को लेते हैं, जिससे पानी की कमी का प्रभाव फसलों पे नहीं होता है और फसल अच्छा उत्पादन देती है। अब जायद की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम करें तो सबसे जरूरी प्रबंधन या सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो वह है कि गर्मी के मौसम में सिंचाई का व्यवस्थित सही तरीके से प्रबंधन करना, क्योंकि इस समय गर्मी अधिक होती है और उसी कारण पानी की कमी रहती है। तो सिंचाई का सही तरीके से यदि प्रबंध हो जाता है हमारे खेत में तो जो हमारी फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस समय हमारे अन्नदाता स्प्रिंकलर, फव्वारा यानी और ड्रिप टपक सिंचाई अपनाते हैं, और इसे हमें अपनाना भी चाहिए क्योंकि इससे पानी की बहुत बचत होती है, पानी का नुकसान नहीं होता है, और जितना हमारी फसलों को पर्याप्त जितना पानी चाहिए उतना पानी हमारे जो फसल होती है उसको मिल जाता है। 3 से 4 दिनों के अंतराल में हल्की सिंचाई यदि हम करते हैं तो वो भी ठीक रहता है फसलों के लिए। और वाष्पीकरण कम करने के लिए मल्चिंग यानी पौधे के आसपास पुआल या प्लास्टिक की शीट का उपयोग करना चाहिए, जिससे जड़ों में नमी बनी रहती है और फसल अच्छी रहती है। फसलों में लगभग हर मौसम में हम देखते हैं कि चाहे बारिश में, तो यदि बारिश में पानी नहीं आता है उस समय की स्थिति की यदि हम बात करें तो सुबह या शाम के ही समय में सिंचाई करते हैं। उसी प्रकार ठंड के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में तो विशेष तौर पे दोपहर को तो करना ही नहीं चाहिए सिंचाई, क्योंकि क्या होता है कि गर्मी बहुत होती है तो यदि हम उस समय सिंचाई करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सुबह या शाम का जो समय रहता है वो समय बहुत अच्छा रहता है सिंचाई के लिए, तो सुबह या शाम के समय में सिंचाई करना चाहिए। और श्रोताओं, हम देखते हैं कि मौसम जो होता है कभी कभी असामयिक वर्षा हो जाती है, जैसे गर्मी

का मौसम है तो भी बारिश हो जा रही है, ठंड है तो भी बारिश हो जा रही है। तो आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि किस समय एकदम से परिवर्तित हो जाए। तो इसके लिए हमें एक प्रबंधन और करने की आवश्यकता होती है, और वो प्रबंधन होता है जैसे भूमि में जल भराव जो होता है, तो जल निकासी और जल जमा करना, दोनों की व्यवस्था करना हमें बहुत जरूरी होता है। तो यदि जल निकासी की, इन फसलों की यदि हम बात करें, तो जल निकासी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी हम कम पानी की फसलें लगाते हैं। यदि पानी ज्यादा हो जाता है और लगातार किसी कारणवश मौसम यदि खराब चल रहा हो और बारिश हो गई, तो ये फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें यहाँ ये भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इस तरह से यदि जायद की फसलों के लिए हमारे किसान भाई सिंचाई का प्रबंध करते हैं, तो निश्चित ही मुनाफा ले सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कृषि चर्चा, और इस कृषि चर्चा के बाद चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

कार्य पर। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो जैसा कि अब खरीफ की फसलें लेने का समय कुछ दिनों में आने वाला है और हमारे किसान भाइयों के खेत भी लगभग अब खाली हो चुके हैं और अब जायद की फसल भी कटाई पर आ ही गई होगी, तो अब इसके बाद हमारे किसान भाइयों को इस समय अगली फसल के स्वागत के लिए, अगली फसल को लेने के लिए खाली खेतों की जुताई अच्छे से करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो मिट्टी है उसे बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी हो जाता है। वैसे तो हमारे किसान भाई, हम हमेशा ही कहते हैं कि हमारे किसान भाई कोई भी कार्य करते हैं तो पूर्व प्रबंधन से ही करते हैं, तो समस्या कम आती है। तो यही कार्य अभी हमारे किसान भाइयों का खेत में चल रहा है। और यदि हमें गर्मी की सब्जियां, जो लगी वाली सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, बरबटी, बैंगन, ये सारी सब्जियां जो अभी बाजार में आ रही है, सारी सब्जियों की तुड़ाई का कार्य इस समय है और इनकी सिंचाई का भी कार्य हमारे किसान भाई कर रहे हैं समय समय पर। और यदि हम बागों की बात करें तो जो फलों की यदि हम बात करते हैं तो अभी चीकू आम की तुड़ाई का कार्य हमारे किसान भाई कर रहे हैं और इसमें इस बार आम में अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी सी जब हवा धुंध चली थी तो कच्चे बहुत से आम हमारे किसान भाइयों के खेत के थोड़े से नुकसान हुए थे, पर फिर भी अभी भी आम की स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। और यदि हम देखते हैं कि अब हमारे किसान भाइयों को यदि हल्दी अदरक लगाना है तो इसके लिए भी समय पर हमें अभी से गड्ढे खोदने की तैयारी करने की आवश्यकता है, तो यह कार्य भी बहुत से खेतों में अभी शुरू हो गया है। और खरीफ की फसलों के लिए बीज, खाद, इसकी व्यवस्था भी हमें अभी से ही करने की आवश्यकता है, तो वह भी हमें कर लेना चाहिए। और जिन किसान भाइयों के खेत में गन्ने लगे हुए, उन गन्नों की जो जड़े हैं उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और यदि किसी को नए फलों की बागवानी लगाना है तो इस समय से ही तैयारी करने की आवश्यकता है, मतलब गड्ढे खोद करके उसमें गोबर की खाद भर के और मिला करके उसे रख देना है। और इस समय यदि भंडारण हम देखते हैं कि कर रहे हैं तो अभी गोदामों की विशेष तौर पे देख रेख, साफ सफाई, टूट फूट की मरम्मत करने की आवश्यकता है। वैसे तो यह पहले ही यह कार्य हो चुका होगा। और इस तरह से इस पखवाड़े के ये प्रमुख कृषि कार्य थे और इसी के साथ संपन्न होता है आज का हमारा कार्यक्रम ग्राम सभा। तो आज्ञा दीजिए अर्पणा को, जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी संदेश आपके गीत। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर देव कुमार सिरती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले गीत के लिए संदेश भेजा है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल कश्यप, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लच्छी, सुनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। आजाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी समैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा, मोहम्मद सगड़ खत्री, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जंगल लव के इस गीत को, जिसकी रचना की है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का और आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

आयुषताओं कार्यक्रम में फिर से हाजिर हैं अगले गीत को लेकर। इस गीत के लिए संदेश है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर से परमलाल विश्वकर्मा, दशरथ विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, पूना आरती, दीपेश, जागृति, मानवी, हर्षिता विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा का ये संदेश है। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म शेर दिल के इस गीत को। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

ये कार्यक्रम में लेते हैं अगला संदेश। ये संदेश है ग्राम लेवी से गुलाबदास मानिकपुरी का, और रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू का संदेश है। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव का संदेश। और संदेश है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव का। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत, जिसकी रचना की है जावेद अख्तर ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज है किशोर कुमार और साथियों की।

आई श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से हाजिर हैं अगले संदेश को लेकर। ये संदेश है सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर का। इन्हीं के साथ है इनके मित्रगण निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाबराव निम्बालकर, संदीप पाटिल। और इसी के साथ अगला संदेश है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, ज्योति, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर का। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म नगीना के इस गीत को, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पाटवाल की।

और ये कार्यक्रम में फिर से हाजिर हैं अगले संदेश को लेकर। ये अगला संदेश है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवनकर राही श्रीमती सरिता गवनकर प्रिंस एकांश गवनकर का। अगला संदेश है बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवनकर प्रणीता गवनकर का। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवनकर श्रीमती वैशाली गवनकर श्वेता सुमित गवनकर कुमारी धोनी गवनकर और उनके सभी मित्रगणों का। अगला संदेश है ग्राम बडोरा से दीप्ति नांदुरकर दिव्या नांदुरकर सोनवा शिरशाम सुनीता शिरशाम नीलम शिरशाम नीलिमा रूही नम्रता प्रियंका प्रवीण उइके और उनके साथियों का। इसी क्रम में अगला संदेश है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नवनीत राय डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज और करनाल से हैं जग की दुआ का। ये संदेश आप सभी ने सुनना चाहा है

घराना के इस गीत को, जिसकी रचना की है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज है सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज की।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम साज और आवाज। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहले ये धुन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साज और आवाज। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये धुन।

श्रोताओं, आप पहचान ही गए होंगे कि ये धुन किस फिल्म की है। ये फिल्म थी बॉबी और इस गीत को गाया है शैलेंद्र सिंह ने। आइए सुनते हैं।

0: संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह के स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देश

0: देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे

0: साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में

0: 1 लाख इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली

0: हरियाणा चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। यह आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये अवस्थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम कटी पतंग, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना राहुल देव बर्मन की।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

लता मंगेशकर और मुकेश को आपने सुना, फिल्म का नाम था उमर कैद। ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम पिया का घर, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश, फिल्म का नाम है संगम, रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रोशन का संगीत साहिर लुधियानवी के बोल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजी फिल्म ताजमहल के लिए।

0: कैसी तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेमजाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी इसका नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 के फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिपर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतुल केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हमसफर देव कुमार सिरती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आइए श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में पहला गीत लेते हैं। इस गीत की फरमाइश है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लखी श्रीवास्तव। लच्छनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और इनके सभी मित्रगणों की। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत आवाज है येशुदास की।

अभी श्रोताओं कार्यक्रम में फिर से हाजिर हैं अगली फरमाइश को लेकर। कार्यक्रम में अगली फरमाइश है मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा से रानी कामत, मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा रानी कामत से उदयभान ठाकरे, चंद्रभागा ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, शिखा और ग्रंथ ठाकरे की। कार्यक्रम में इसी गीत को सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश है भूर सुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी संतोषी, गजेंद्र चंद्र प्रकाश, नेहा चिराग सेन और उनके सभी मित्रगणों की। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सुहाग का ये गीत, जिसकी रचना की है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की।

ये कार्यक्रम में फिर से हाजिर हैं अगले गीत की फरमाइश लेकर। अगले गीत की फरमाइश है आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना शर्मा।

देवांश शर्मा की। कार्यक्रम में इसी गीत को सुनना चाहते हैं जवाहर वार्ड से पूरनलाल रायपुरे, हरीश आर्य, ललित रायपुरे, उमेश जैन, जगन्नाथ हरने। कार्यक्रम में इसी गीत की फरमाइश है ग्राम काल डोंगरी पोस्ट धामन गांव तहसील भैंसदेही जिला बैतूल से अमन युवनी, नमन युवनी, महिमा नैना, अंचला युवनी, देवेश राज परते, दीपिका परते, रोशनी दीपक परते और समस्त परिवार की फरमाइश है। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म पड़ोसन के इस गीत को, जिसकी रचना की है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत आर डी बर्मन का और आवाज है लता मंगेशकर की। कभी वो आंखों में बसकर दिल में उतर जाएंगे, कभी वो आंखों में बसकर दिल में उतर जाएंगे, उस दिन मेरी उम्मीदों के फूल संवर जाएंगे। जब घूंघट उठाऊंगा मैं तो वो लजाकर कहेंगे, जब घूंघट उठाऊंगा मैं तो वो लजाकर कहेंगे, अल्लाह यूं न देखो हम शर्म से मर जाएंगे।

निजी कार्यक्रम में फिर से हाजिर है अगली फरमाइश को लेकर। कार्यक्रम में अगली फरमाइश है ग्राम जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब बड़ौदे मीनाक्षी चरपे रजनी कनीरे चंद्रप्रभा बड़ौदे और इनके सभी साथियों की। कार्यक्रम में अगली फरमाइश है छत्तीसगढ़ भाटा पारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा की। कार्यक्रम में इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हादिया खान अस्मा सालिया शोएब खान पोत्रा मुस्ताफा खान राव भाई शाहिद भाई आप सभी की फरमाइश है फिल्म ससुराल के इस गीत की जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लेते हैं अगली फरमाइश। ये फरमाइश है हनुमान चौक वार्ड नंबर 4 केरपानी से संतोष बात्री, शकुन बात्री, अंजलि बात्री, नीलू, कृष्णकांत, नितिक्षा, सुमित बात्री, पप्पू, जयदीप, जयदीप, जय, प्रदीप, अर्जुन शिवनकर, लक्षु यादव, गंटू महाराज, सहदेव उइके और एस के बात्री की। कार्यक्रम में इसी गीत को सुनना चाहते हैं टिकारी बैतूल से कैलाश प्रसाद यादव, देवकी यादव, ऋषभ बिट्टू यादव, रुचि यादव, ऋतु, रजत, रियांश, रितेश राठौर, कृष्णा सोनी की। कार्यक्रम में ये फरमाइश है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कलका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी तुआ की। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म कुदरत के इस गीत को। रचना की है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का और आवाज है प्रवीण सुल्ताना की।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विदुषी प्रभा अत्रे का गायन। राग है मधुवंती। लीजिए प्रस्तुत है।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना विदुषी प्रभा अत्रे का गायन, राग था मधुवंती। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक

कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: warfare and drone-based challenges. Short-range ballistic missile Agni-1 was successfully test-launched from the integrated test range at Chandipur, Odisha today. Ministry of Defense said that the launch validated all operational and technical parameters. The test was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. The successful launch marks another milestone in India's strategic defense preparedness and reinforces the credibility of the country's minimum credible deterrence capability. Agni-1 is a short-range surface-to-surface ballistic missile developed indigenously as part of India's strategic missile program. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on 26th of this month at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said in keeping with Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
2: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी
0: इनविटेशन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पेनी वॉन्ग, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान तोशिमित्सु मोतेगी एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मार्को रूबियो आर अराइविंग इन न्यू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इन कीपिंग विद क्वाड विजन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, द मिनिस्टर्स विल बिल्ड ऑन डिस्कशंस हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी ऑन 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
2: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी